आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

चार घंटे देश और दुनिया की जानकारी के लिए समाचार तो आप सुनेंगे ही, साथ ही आज के अन्य कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 6:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम सत्यवचन और इसके ठीक बाद कार्यक्रम सुप्रभात लेकर साथ रहेंगे गौतम। 7:05 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ होंगे गौतम और सीमा, आपको रूबरू कराएंगे दिल्ली और उसके आसपास होने वाली गतिविधियों से। 9:00 दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर एक बार फिर आपसे मिलेंगी सीमा।

10:05 पर पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम में अदिति बिष्ट रहेंगी आपके साथ मैचलेस म्यूजिक आर लेकर, और 12:05 पर एक बार फिर अदिति लेकर आएंगी प्लेट कूल cool।

बजे सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज आपके साथ होंगी डॉक्टर मधु खुराना, योग थेरेपिस्ट, और साथ ही रीता गंगवानी, जो कि है एक पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और इनसे बातचीत करेंगी शालिनी मित्तल।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों

0: के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
6: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
7: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
10: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
9: More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
9: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of 6 candidates are in the fray, including 2 independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panta. Congress has fielded Abdul Razak Molna, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
11: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
9: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
5: Yesterday at the state secretariat Novarno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers. 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
12: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back. You're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
13: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
9: Mr. Parvathineni's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest, so the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heatwave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heatwave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
14: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, no cosmetic job with jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
9: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.

0: हेलो नमस्कार आर सब खनि थगा लिसनर्स खान गे मोरम सलाम जनाई दिया से इटु आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रेगोपेन 103 मेगाहर्ट्ज आरो मय आपनि हन सब के माइकी मानु आवाज प्रोग्राम लगा नतुन एपिसोड ते सब के स्वागत आरो वेलकम क्रियासे वेल डियर लवली लिसनर्स मय आपनि खान लगा होस्ट मीना विश्वकर्मा विश्वंसु और आज लगा खास एपिसोड टे वेमेन इन म्यूजिक माइकी मानु संगीत थकिया ऊपरे आसे और आज आम खान लगे जुड़ी बोले आसे खास स्पेशल गेस्ट टैलेंटेड सिंगर सॉन्ग राइटर और एकदम भाल स्मार्ट परफॉर्मर भी आसे वेलकम क्रिएसे मिस रेनबेनी ऑडियो जुन पूरा नोटिस इंडिया दे तै लगा गीत खान बिशी खुशी मोरम आरो रिकॉग्नाइज करिए रेनबेनी ऑडियो दु तै लगा म्यूजिक मोफसल दु नागा ऑर्फियस इन 2010 दे जीतिशे आरो इतु पिछे दे म्यूजिक मोफसल शुरू करिशे विथ हर मेलोडियस वॉइस सब मानु खान लगा मन जीतिशे तै लगा गाना खान परा वाइल्ड फायर स्वीट एस्केप आरो तै लगा नूतन ट्रैक जाई जाईले बिशी ऑडियंस खान भी खुशी पाइशे और लिसनर्स को दिवो इतु मुइला भी बिशी मन पसंद गीत एकता आसे वेल डियर लवली लिसनर्स इति आमी खान खास इंटरव्यू दे जुड़ीबो ले आसे आज आमी खान लगे खास गेस्ट मिस रेनबेनी ऑडियो लगे मिस रेनबेनी ऑडियो अपनी गे स्वागत वेलकम असे अमी खान माइकी मानो आवाज प्रोग्राम दे
1: थैंक यू
0: महान लिसनर्स खान भी बिशी खुशी असे अपनी ला टाइम हुमोय आहिने महान वेमेन प्रोग्राम दे कनेक्ट कर दिया निम दे आरो खास कर ना माला डियर लिसनर्स खान भी अजी माला स्पेशल गेस्ट लवदे तला जर्नी पोरे हुनी उदे से तो तहन भी एक्साइटेड असे आरो महान भी सब एक्साइटेड असे सो अपनी गे डिले नुकरो अपनी ला जर्नी अपनी ला प्लान्स खान अपनी किन्या स्टार्ट करिशे इट इज सब अपनी ला म्यूजिक जर्नी ला पढ़े जानी उले खास कर अपनी ला म्यूजिक की ना अपनी शुरू करी शे तो सबसे पहला अपनी ये हुदी उले मुन था यारो अपनी लगा जर्नी मोफसल एकता जितिया नागा आइडल पर प्रोफेशनल सिंगर इतो पढ़े हुनिया बिला खान ये अलग कोई दिवी ना इतो पढ़े
1: जर्नी तो अचानक था कि शे
0: ओके
1: कॉलेज ते था गाम दे इतो नागा आइडल ला ऑडिशन हुआ से हुना खबर पाई शे तो एग्जाम ला मिडल दे जाए ना मु ऑडिशन करिशे तो मु तो कितने भी भावे ने चिती हो कोई ना और लाइक ऑडिशन दे भी थ्रू जो जाओ बारवन ना पाओ शो ठाई ने तो ली एकता एकता धान सिलेक्ट करी करी ना तो सीजन दे खुशी जाइशे वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स भी जाइशे तादे चिती अभी चीजे उतु टाइम ने तो नगाई रोल तो पिछी दाउट आइशे तो इधु टाइटल चिती अभी पिछी दाउट आइशे तो তাদের চিঠিয়া ওরা আচানক পড়া সব মানুষ মাতিয়া সার্ভিস তো সব বুকিং বুকিং হয়ে না তো টাইম দে মই ভাবি যাইছে এইটো তো কেরিয়ার বানাব পারো নি কেরিয়ার উতো টাইম দে তো গানা করলে নলি এন্টারটেইনমেন্ট না দিলে মন মানুহ মন এনকারেজ নকৰে গভর্নমেন্ট কাম চাব ইনা না বিজনেস করব লাগে নলি মিউজিক পি বিজনেসই আছে তো bookings kan paina ina una puisa pasta rishi to chito mo to ile pa do oi to zo moi kam actual kam grow pare na to tate rai kamaina ina grow go ina mo decide ko rishi to de bi shi zo na jini na 10 years 10 years into the industry ho ji shi na to ina hi start ho ji shi mo la professional career
0: man ba na abni la platform de ni professional
1: banai ji shi na ita ho ji shi na

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते।
1: सर। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम
0: हाँ
1: बछोड़ा
0: प्रेम,
1: तहसील नागदा जिला उज्जैन से। जी
0: ओके प्रेम सिंह जी, बताइए कैसा है आप।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके,
1: जी
0: उधर मौसम कैसा है।
1: जी यहाँ पे काफी गर्मी है सर अभी, और थोड़ी गर्म हवाएं भी चल रही है। जी
0: ओके ठीक है ठीक है। आज कौन से गाना सुनना है आपको प्रेम सिंह जी।
1: जी सर, तीन मकान है, गंगा यमुना सरस्वती।
0: गंगा जमुना सरस्वती।
1: जी हाँ, इसका वो है ना, साजन मेरा उस पार है, साजन
0: कौन से बोला।
1: मेरा उस पार है। जी
0: सजन मेरा उस पार। ओके,
1: हाँ
0: लता मंगेशकर का आवाज में ना।
1: जी
0: ओके ठीक है, बजा देगा।
1: जी और आपके उधर कैसा मौसम है अभी?
0: अभी आज तो मौसम अच्छा है, पानी बारिश भी नहीं हो रहा है अभी, मतलब गर्म हो रहा है। यहाँ भी
1: जी
0: ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ रहा है अभी तो, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ
1: हाँ,
0: हाँ
1: वैसे आपको बताओ, मोबाइल एक्सरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके।
0: अच्छा है, अच्छा ही सुन रहा है। अच्छा, आप लोग के प्रोग्राम क्या, कौन से मीडियम में सुनता है ये।
1: जी मोबाइल
0: मोबाइल,
1: एक्सरे
0: मोबाइल से
1: मीडियम।
0: नहीं तो
1: हाँ
0: डीटीएच,
1: जी,
0: डीटीएच से ना, मोबाइल से।
1: डीटीएच से भी सुन सकते हैं, फिलहाल तो हम मोबाइल पर सुनते हैं कार्यक्रम आपका।
0: ओके, मोबाइल मतलब ऐप, उस मोबाइल ऐप से ना।
1: हाँ जी, मोबाइल ऐप पे है ना, न्यूज ऑन AIR
0: आ, आ,
1: करके
0: या
1: हमारे
0: या
1: पे
0: या
1: मिलता
0: या
1: है। हाँ
0: ओके ओके ओके
1: जी
0: ठीक है ठीक है। ओके, उधर सफा मिलता है, अच्छा से मिलता है
1: हाँ
0: ना।
1: जी, बिल्कुल नेटवर्क साफ मिलता है यहाँ पे, और

0: भी काफी अच्छी आती है।
1: ओके ओके, थैंक यू मुझे वो
0: जी
1: जानने जानना है ना, इसलिए हम लोग
0: हाँ
1: ये।
0: जी तो
1: हाँ ओके, एनीवे आप
0: मैं
1: किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
0: जी हमारे दोस्त है भगवान सिंह शर्मा, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, कानपुर से जी संगीता जी हैं, और उसके बहुत सारे श्रोता है हमारे जो आकाशवाणी सुनते रहते, सभी के लिए डेडिकेट रहेगा।
1: ओके ओके, बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपको तब तो। हाँ
0: जी
1: ओके,
0: सर,
1: थैंक यू थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच।
1: वेल लिसनर्स कन प्रोग्राम टेटिया हुनी वो अपन लोग के लता मंगेशकर लगा हुआ फिल्म से गंगा जमुना सरस्वती।

0: हेलो
1: जय माता जी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है और
0: हाँ
1: मैं
0: जी।
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का
0: ओके
1: अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके। पुरन जी बताए कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी बढ़िया हूँ आप जैसा।
1: जी। तो
0: अच्छा,
1: सर
0: उधर मौसम कैसा है आज?
1: जी, सर मौसम बढ़िया है, यहाँ गर्म हवा चल रही है और धूप है अभी।
0: अभी धूप है ना,
1: हाँ जी,
0: गर्मी बहुत हो गया।
1: हाँ गर्मी बहुत हो गई और बढ़ेगी, 12-1 बजे के आसपास और बढ़ जाएगी, शाम 4 बजे तक रहेगी सर।
0: ओके। और रात में ठंडा हो जाता है ना?
1: हाँ रात में ठंडी हो जाती है, अगर बादल छा जाते तो उमस हो जाती है, अगर मौसम साफ होता है तो कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा, कहीं जैसे बर्फ ऊंचे इलाका में बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है तो फिर इधर ठंडी हवा चलती है।
0: ओके ओके। आज कौन से गाना सुनना है आपको, कौन से फिल्म का?
1: जी सर, फिल्म का नाम है तू चोर मैं सिपाही। जी
0: ओ, तू चोर मैं सिपाही ना।
1: जी
0: तू चोर मैं सिपाही। अच्छा पुरन जी,
1: जी
0: ये तू चोर मैं सिपाही गाना तो नहीं है हम लोग के पास। हम लोग
1: अच्छा,
0: का
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा रंग।
0: रंग।
1: यस
0: हाँ रंग तो है।
1: इसमें गाने तो बोले श्याम वाला नखरा लड़की का, वाह
0: क्या बोला? फिल्म का गाना का नाम
1: नखरा लड़की का वाह वाह।
0: नखड़ा वाला रंग का फिल्म से।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये मेरी दुआ है में असर आई, ये है आई हो अभी, ये तो
1: जी
0: मुमकिन ही नहीं। खुदा की कसम, हम
1: जी
0: थे तुम थे, हवा
1: जी
0: ये हवा ने ये पैगाम,
1: जी
0: इश्क ना मांगे, इतना ही है गाना। दूसरा आप जो मांगा वो तो नहीं है।
1: अगर इसमें ये गाना भी है तो इसमें होगा अपने दिल ने मकान कर दिया भी नहीं है,
0: नहीं है तो
1: तो फिर
0: नहीं,
1: कोई
0: इश्क
1: गाना
0: ने मांगे ये तो है, इश्क ने मांगे।
1: नहीं, तो फिल्म का नाम रहेगा वो राज
0: राग
1: राज राज
0: स्पेलिंग बताएगा उसका, रात का
1: फिल्म का नाम है राज राज
0: राज।
1: सर।
0: राज ना राज
1: यस यस यस, राज राज 2003 की है राज।
0: आर ए। मैंने आपको
1: जी सर गाने के बोले मुझे, फिल्म का नाम है राज और गाने के बोले मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो।
0: मुझे तेरी जैसे आपके राज राज बोलो ना राज।
1: हाँ यस यस,
0: ठीक है ये बजा देगा। तो किसको
1: मिल
0: डेडिकेट करना
1: गया
0: है? हाँ मिल गया।
1: तो सबसे पहले तो आप हैं
0: ओके
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, और कोई माँ के सोता है और बिमल है और अमर है,
0: ओके
1: और जितने कॉलर लाइव आपके कार्यक्रम, जिस श्रोताओं का नाम भूल गया, धर्मवीर भी सुन रहे लाइव आपका कार्यक्रम
0: ओके
1: और
0: ओके।
1: तमाम। थैंक
0: थैंक यू शुक्रिया। ओके ओके
1: यू सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। वाल प्रोग्राम टेको हनी वो अपन लोग की उदित नारायण और सारिका कपूर लगा वास्ते से फिल्म से राज।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया
1: जी
0: बढ़िया
1: जी जी बिल्कुल। तो आज कार्यक्रम 1 बजे तक आएगा क्या?
0: है। क्या क्या बताया?
1: 1 बजे तक कार्यक्रम आएगा क्या? दोपहर
0: हाँ,
1: 1 बजे तक?
0: 1 बजे तक चलेगा।
1: अच्छा, ठीक है। तो जो जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी सुन के रखिए कि आज कार्यक्रम समाचार के बाद फिर से आएगा, कंटिन्यू होगा।
0: हाँ, कंटिन्यू होगा।
1: जी। तो सर जी, मुझे मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अविनाश तेरी ना।
1: जी।
0: अविनाश
1: तो
0: जी,
1: जी
0: तो कौन से फिल्म का सुनना है आज?
1: जी तो अभी पूरन भगवान को लगा था, उन्होंने जो गाना सुनना चाहा था वो मूवी का नाम, दरअसल वो गलत बता रहे थे इसलिए आपको गाना नहीं मिला था। वो मूवी का नाम था सुहाग और गाने के बोल है सावा ए नखरा लड़की का।
0: सुहाग
1: हाँ, सुहाग, इसलिए आपका वो गाना नहीं मिला था।
0: सुहाग
1: जी।
0: सुहाग सुहाग में तो सिर्फ एक ही गाना है।
1: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप मेरे लिए निकाल दीजिएगा बाजीगर मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: बाजीगर
1: जी
0: हाँ, बाजीगर का टाइटल सॉन्ग ना।
1: जी जी
0: ठीक है।
1: जी तो मेरे साथ सुनेंगे पहले तो

0: वापसी ले रहेगा।
1: ओके थैंक यू
0: जी। उसके बाद है पूरन बाबा जी, राकेश जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसी सिंह जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, आशुतोष जी, अभिनव जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं।
1: okay.
0: और महाराष्ट्र से हमारी छोटी बहन है तनुश्री, जो एक शास्त्रीय संगीत सीखती है, बहुत अच्छी है, उनकी आवाज भी है, तो उनके लिए भी रहेगा ये गीत।
1: ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके धन्यवाद आपको। ठीक है तब तो ओके। वेल लिसनर्स का नित्य हुनी वो अपने लोग की कुमार शानू और अलका यज्ञिक लगा हुआ फिल्म से बाजीगर।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: सर, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं किराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके, बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर। फिल्म का नाम है राजा।
0: राजा
1: के बोल हैं, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना।
0: राजा फिल्म का नाम है राजा ना? किसी दिन बनोगी मैं राजा,
1: राजा की रानी, जरा फिर से कहना। मिल गया सर?
0: मिल गया मिल गया
1: जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके कार्यक्रम के बारे में सर।
0: ओके बताइए
1: सर। कार्यक्रम आपका हमें बेहद पसंद आता है सर, और आकाशवाणी का जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये नारा आप लोगों ने मतलब किया है, तो सभी श्रोता का समान अधिकार रहता है सर आकाशवाणी पर।
0: ओके
1: तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लोकल के श्रोता कहते हैं कि बाहर के श्रोता जुड़ रहे हैं।
0: हाँ हाँ जी,
1: तो हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना लोकल के श्रोताओं का अधिकार है सर।
0: हाँ हाँ जरूर जरूर।
1: तो और आपका कार्यक्रम डीटीएच क्रेडिट पर भी आता है।
0: ओके ओके,
1: वो मोबाइल ऐप पर भी आता है, तो सर हम आपको सुनते हैं, तो इसलिए हम आपके यहाँ कॉल मिलाते हैं सर।
0: ओके बहुत बहुत अच्छा है।
1: तो इसमें किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
0: ना ना ना, क्यों क्यों नाराजगी होगा, ये तो अच्छा है। हम लोग को जब कॉल मिलता है दूर दूर से, तो हम लोग को भी बहुत पसंद आता है
1: सर। पूरे भारत के श्रोता आपको सुनते हैं, हमारे ग्रुप में से भी 200-250 लोग आपको सुनते हैं, वो पूरा भारत का ग्रुप बना हुआ है हमारा भी सर।
0: ओके ओके
1: जी सर,
0: ठीक है जी। तब तो समय भी खत्म हो रहा है, इसलिए बजा देगा आपका
1: दोस्तों को डेलीकेट रहेगा, क्योंकि समय नहीं है तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा।
0: ओके ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके धन्यवाद आपको,
1: धन्यवाद।
0: वो उदित नारायण राल का एक निकल का वास्ते फिल्म से राजा।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

है दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आए।

0: कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। जी हाँ, कहा था मैंने आपसे जब बॉलीवुड ट्रेल्स में ले रही थी विदा कि दोबारा एक बजे फिर आपके साथ जुड़ूंगी, दोबारा से आपसे बातें होंगी और इस बार मैं लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, यानी कि वो गाने जिनकी फरमाइश, जिनकी रिक्वेस्ट आप हम तक पहुंचाते हैं और हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें प्ले कर सके। तो फिलहाल जो गाना, जो पहला सॉन्ग आज के प्रोग्राम का मैं प्ले कर रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट प्रीति ने मुझे भेजी है रोहिणी नई दिल्ली से, और उन्होंने लिखा है कि ये गाना उनका पसंदीदा है और इसीलिए ये इसे सुनना चाहती हैं। तो चलिए फिलहाल प्रीति की पसंद पर इस गाने को प्ले कर रही हूँ और दोस्तों के मैसेजेस ज़रूर शामिल होंगे। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग में, अपनी पसंद के गाने वो लिखकर भेज रहे हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि हम यहाँ प्ले करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस बात की, ये तो वादा रहता ही है आपसे हमारा। फिलहाल बागेश्वर गोरखपुर यूपी से मेरे पास मैसेज आया है, बागेश्वर का मैसेज आया, माफ़ कीजिएगा, गोरखपुर यूपी से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है जिसे यहाँ पर अभी मैं प्ले कर रही हूँ। एक और मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, कोशिश करूँगी आपका गाना शामिल कर सकूँ, फिलहाल आपका नाम ज़रूर शामिल कर रही हूँ। अनीता वर्मा ने पीतमपुरा दिल्ली से मैसेज किया है। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया, खूबसूरत से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट भेजी है। आसाम से ये मैसेज आया है मेरे पास, शान सिंधलो ने ये मैसेज किया है, मुझे लग रहा है मैं नाम सही पढ़ रही हूँ, पर अगर गलत पढ़ रही हूँ तो माफ़ी चाहूँगी। और भी बहुत सारे दोस्त लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। मेरठ कैंट से मैसेज आया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, इन्होंने 3-4 गाने लिख के भेजे और लिखा है कि इनमें से कोई प्ले कर दीजिए, ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी पसंद का गाना प्ले करने की। फिलहाल के लिए ये गाना यहाँ पर एंजॉय कीजिए दीपिका के साथ, अपने इस साथ को बनाए रखिए, मैसेजेस करते रहिए और बस बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और जिसे आप इस वक्त यहाँ पर यानी कि आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं दीपिका के साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मेरे पास मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से, भोजराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। इन्होंने बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट किए हैं जिसमें से एक गाना यहाँ पर मैं प्ले कर रही हूँ। एक और मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, दीपिका जी को नमस्कार। ये मैसेज किन्होंने लिखकर भेजा है, अपना नाम नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं दोस्त, अपना नाम लिखकर दोबारा मैसेज कीजिएगा। सना का बिजनौर से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है, ज़रूर कोशिश की जाएगी आपकी पसंद का गाना मैं यहाँ पर प्ले कर सकूँ। इसके अलावा एक और मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किया है मास्टर राधे श्याम ने कासगंज से, इन्होंने भी एक गाना रिक्वेस्ट किया है। अनुज कुमार का मैसेज आया है लखनऊ से, ज़रूर कोशिश करूँगी आप सभी दोस्तों के मैसेजेस शामिल

कर पाने की, आपकी पसंद का गाना प्ले कर पाने की, लेकिन जिनका गाना प्ले नहीं भी कर पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट उनके मैसेजेस शामिल करके उनके नाम को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि उनका मैसेज कहीं पीछे छूट गया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। बहुत सारे मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगला सॉन्ग जो यहां मैं प्ले कर रही हूं, सना ने बिजनौर से इसकी रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन ये गाना प्ले हो उससे पहले कुछ और दोस्तों के नाम मैं शामिल कर लेती हूं। नवलू वरक का मैसेज आया है गोवा से, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, जरूर कोशिश की जाएगी प्ले करने की। भगवती ने जबलपुर से हमें मैसेज किया है। इसके अलावा जो मैसेज मुझ तक पहुंचा है, ये ए के पांडे, हर्षवर्धन पांडे और इन्होंने मैसेज हमें किया है पन्ना मध्य प्रदेश से। अगला मैसेज जो यहां पर मैं शामिल कर रही हूं, ये मैसेज किया है प्रियांशी ने, ये मैसेज हमें किया है दिल्ली से। एक और मैसेज, एक और दोस्त का नाम जो जल्दी से यहां पर हम ले देते हैं, ये मैसेज पहुंचा है दिनेश कुमार, उमेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार का ख्याल से। बहुत सारे दोस्त और भी मैसेजेस कर रहे हैं, जानती हूं मैं, जरूर मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के मैसेजेस मुझ तक यहां पर जो पहुंच रहे हैं उन्हें मैं शामिल कर पाऊं और सॉन्ग्स भी प्ले कर पाऊं आपकी पसंद के। फिलहाल के लिए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए जिसकी रिक्वेस्ट सना ने मुझसे की थी, बिजनौर से इन्होंने ये मैसेज किया था। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, ये है एफएम रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका और यहाँ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। अगली रिक्वेस्ट जो मैं शामिल कर रही हूँ, भगवती ने जबलपुर से इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है जिसे यहाँ मैं प्ले कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ मैसेजेस आए हैं, फारूक अली, फैजी, फराज, फरहीन, फरहाना, फारिया, ताहिरा का मैसेज आया है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से, कांट से मोहम्मद फुरकान का मैसेज आया है, इसके अलावा अमरावती महाराष्ट्र से पंकज का मैसेज आया है, सलमा बेगम और मोहम्मद इम्तियाज का मैसेज आया है जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और साथ ही जो अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, निकिता और प्रिया का मैसेज आया है, इन्होंने मैसेज किया है दिल्ली से, सांवरलाल का मैसेज आया है अहमदाबाद से। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और लगभग सभी के मैसेजेस मुझे लगता है मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। अगला मैसेज जो पहुँचा है मुझ तक, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से है। जी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी पसंद का गाना यहाँ पर प्ले कर सकूँ। फिलहाल भगवती की रिक्वेस्ट पर इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

ये शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका के साथ है आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मोहम्मद फुरकान ने एक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है जिसे यहां पर अभी मैं प्ले करने जा रही हूं, और आई गेस आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सॉन्ग होने वाला है ये, लेकिन कुछ और दोस्तों के नाम जरूर मैं शामिल करने की कोशिश कर रही हूं। अरुण कुमार का मैसेज आया है मेरे पास भटिंडा से, माफ कीजिएगा आपकी पसंद का गाना तो अभी प्ले नहीं कर पाऊंगी लेकिन नाम आपका जरूर शामिल कर लिया है। मीरा सिंह ने आसाम से मैसेज किया है। इसके अलावा सोनिया विहार दिल्ली से यमुना प्रसाद का मैसेज आया है। सावर लाल का अहमदाबाद से मैसेज आया है। टिंकू का वजीर बाग लखनऊ से मैसेज आया है। और जो अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ ये मैसेज आया है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का होली चौक उत्तम नगर से। इसके अलावा मुझ तक मैसेज पहुंचा है राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार का ख्याला विष्णु गार्डन से, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। इस प्रोग्राम में तो मैं आपकी पसंद का गाना नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्ले कर पा रही हूँ, लेकिन जिस गाने की आपने रिक्वेस्ट भेजी है मैंने अपने

पिछले शो में यानी कि बॉलीवुड ट्रेल्स में इस गाने को प्ले किया था। तो चलिए लगभग सभी दोस्तों के मैसेजेस यहाँ पर मैंने शामिल कर लिए हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणवीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ने भी मैसेज किया है। जिन दोस्तों के मैसेजेस शामिल नहीं हो पाए होंगे उनसे माफी चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में आपसे मुझे लेनी होगी इजाजत। जल्दी होगी होगी फिर मुलाकात। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। 2 बजे से आपके साथ जुड़ेंगे शाहिद, लेकर आएंगे प्रोग्राम आशियाना। फिलहाल के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। आकाशवाणी FM रेनबो के साथ अपने साथ को यूं ही बनाए रखिए।

आज थर्सडे और आज आशियाना में टॉपिक होता है हमारा वरिष्ठ नागरिकों के, वृद्धों के बारे में, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो हर थर्सडे की तरह आज आशियाना में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, हमारे घर में मौजूद हमारे बुजुर्गों के बारे में, जिनका होना ही घर को रोशन रखता है और हमें एक खूबसूरत खुशी का एहसास कराता है।

हमारे बुजुर्ग जब घर पर होते हैं तो उनका घर में होना ही घर को रोशन रखता है और हमें एक खूबसूरत खुशी का एहसास कराता है। आज हम उनकी वेलबींग और केयर के अलावा बात करेंगे हमारे वरिष्ठ नागरिकों की उनके परिवार के प्रति कुछ जरूरी जिम्मेदारियों के बारे में। हमारे बुजुर्ग एक्सपीरियंसेस का खजाना होते हैं। आप उनसे आम जिंदगी की रोजमर्रा सामने आने वाली सिचुएशंस से लेकर के फैमिली के बड़े से बड़े इशू पर भी तजुर्बे से भरपूर जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली राय ले सकते हैं। तो इसलिए उनका जब घर में होना है तो कितना जरूरी है और कितना अहम होता है, ये हम बात करेंगे आज के आशियाना में। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हम हमेशा अपने बुजुर्गों की, अपने वृद्ध, अपने सीनियर सिटीजन की जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, उनकी वेलबींग, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी फिटनेस और उनकी केयर के बारे में तो हमेशा ही बात करते हैं आशियाना में, मगर आज हम बात कर रहे हैं उनकी अहमियत की, उनके अपने तजुर्बों से फायदा उठाने की और उनके होने से जो फायदा होता है, जो फर्क पड़ता है पूरी फैमिली पर उसकी। हम अपने बुजुर्गों से न सिर्फ आम जिंदगी की रोजमर्रा सामने आने वाली जो प्रॉब्लम्स सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में उनसे फायदा उठा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से अपने आप को ठीक लेकर के चल सकते हैं अपनी लाइफ में, बल्कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभवों से भी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का आसानी से सामना भी कर सकते हैं, बल्कि उनके अनुभवों से सीख लेकर खुद को उन मुसीबतों से बचा भी सकते हैं। और जिसे कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंसेस, जो वो परेशानी, मुश्किलें वो झेल चुके हैं, वो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ताकि आपको उन मुश्किलों को ना झेलना पड़े और वो अननेसेसरी जो टफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आपको बचाने की वो कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेडियो पर प्रोग्राम आशियाना आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद। तो बात वरिष्ठ नागरिकों के हमारे परिवार में होने की, उनकी अहमियत की आज हम कर रहे हैं बात। हमारे घर के बुजुर्ग छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स, परिवार के लोगों की आपसी कलह, रंजिश को मिटाने, दूरियां खत्म करने और आपसी प्यार मोहब्बत, मेल जोल को पटरी पर लाने बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। कभी कभी फैमिलीज में ही नहीं, रिलेशनशिप और रिश्तेदारों के बीच की खाई को पाटने का काम जिस खूबी से ये हमारे वरिष्ठ अपनी सूझबूझ से कर पाते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही अपने बुढ़ापे में हमारी जरूरत होती है, बल्कि परिवारों को आपस में जोड़कर रखने और आपस में एक हेल्दी एनवायरमेंट और रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमें उनकी हमसे ज्यादा जरूरत होती है।

102.6 देश नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेन बबर प्रोग्राम आशियाना सुन रहे हैं आप शाहिद के साथ। बात आज के दिन होती है बुजुर्गों की। यहां तक ये बात तो समझ आ गई कि हमारे बुजुर्ग भी हमारे और हमारे पूरे परिवार की खुशहाली के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जिनके हाथ में रिश्तों की डोर है वो खुद ही उसे छोड़ देते हैं। जिनकी बात में मजबूती है, असर है और वजन है, वही कभी कभार अपने परिवार को, अपने छोटों को उनके हाल पर छोड़ दिया करते हैं और बस खामोश तमाशाई बन करके रह जाते हैं। अपनी अहमियत को खुद ही खत्म कर सरेंडर कर देते हैं ईगो और एरोगेंस के सामने। और यही वक्त होता है जब अपनी पोजीशन संभालने का, फिर से अपनी इंपॉर्टेंस जानने का, अपनी बात को मजबूती से रखने का और बिखर रहे परिवारों को आगे बढ़कर आपस में जोड़ने का, प्यार का सबक एक बार फिर पढ़ाने का, जो भूल गए हैं उन्हें फिर से याद दिलाने का कि आप यानी हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर्स अभी हैं और अपना फर्ज पूरी तरह से निभा सकते हैं। जिस परिवार में जहां बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं, वहां सब मिलकर मुश्किलों से भी हिम्मत से टकराते हैं, पूरा परिवार साथ साथ हंसता है और चैलेंजेस का डटकर साथ साथ मुकाबला करता है और जीतता है। फिलहाल आशियाना में इतना ही, शायद आपसे लेगा विदा, आपसे मैं मिलूंगा 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, अरुणोदय मिखलना का फर्स्ट लकी मैसेज यदि थकी धनंजॉय फ्रॉम सरुबथार असम।

0: हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: यस, वेरी गुड इवनिंग टू यू माय डियर। वेलकम टू द शो। ओके,
1: थैंक यू सर।
0: सो मे आई नो योर नेम?
1: माय नेम इज मिनाल अहमद। आई एम कॉलिंग फ्रॉम करीमगंज।
0: ओके, यू आर कॉलिंग फ्रॉम?
1: करीमगंज असम,
0: ओके, करीमगंज असम। सो
1: बराक बेले।
0: ऑल राइट, दैट्स सो गुड टू नो। सो मिस्टर अहमद,
1: या
0: are you a regular listener?
1: या सर,
0: Okay, so what is a song you want me to play for you this evening?
1: can you play the song "Be With You" by Akon?
0: Be With You by Agon.
1: Akon.
0: All right, definitely we will check it out. Is
1: Okay.
0: Agon your

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार सर।
0: हेलो नमस्कार, मैं आई नो हु इज कॉलिंग।
1: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह।
0: ऑलराइट मिस्टर सागर,
1: जी जी जी,
0: वेलकम टू द शो।
1: जी वेलकम।
0: ओके सो आपका रिक्वेस्ट
1: बोलिएगा। वो है कृष्ण, दिन ना दिया प्यार ना किया तो क्या किया।
0: अरे बाबरे भाई, ये तो वेस्टर्न म्यूजिक का शो है यार। हेलो आपका, यस यू कैन रिक्वेस्ट एन इंग्लिश सॉन्ग।
1: हाँ इंग्लिश सॉन्ग कोई भी सुना लो। तो
0: कोई भी सुना लो।
1: जी जी,
0: कौन सा वाला? अरे थोड़ा तो याद करो ना।
1: इंग्लिश वाला?
0: हाँ
1: इंग्लिश वाला कोई भी सुना दो। तो
0: अरे माइकल जैक्सन का बजा दूं?
1: हाँ माइकल का बजा दो।
0: कौन सा वाला?
1: इसका कोई भी बजा दो।
0: कोई भी?
1: जी
0: मतलब डेंजरस आपको अच्छा लगेगा शायद।
1: हाँ जी जी जी।
0: हाँ जी, और आज का दिन कैसा था?
1: आज का दिन अच्छा हुआ, तरह से धूप गर्मी हो रही है।
0: हाँ अभी तो समर हो गया ना।
1: हाँ कोई रूम नहीं, कैसी गर्मी हो रही है, बरसात हो रही।
0: बरसात भी होना चाहिए।
1: अच्छा जी जी जी,
0: चलो ठीक है, हम बचा देगा डेंजरस वाला गाना।
1: जी
0: बहुत देर से सुनेगा, ठीक है
1: जी।
0: चलो बाय बाय,
1: गुड बाय, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है।

0: जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स, अपने कंसर्व के प्रोग्राम में स्वागत करिए। से आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज ते अपनी खन लगा होस्ट और दोस्त आरजितम जन लोग दे। वेल माय डियर फ्रेंड्स, एज द नाइट बिकम्स काम एंड पीसफुल, लेट अस ट्रेवल बैक टू द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा, अ टाइम ऑफ सोलफुल वॉइसेस, मीनिंगफुल लिरिक्स एंड अनफॉरगेटेबल मेलोडीज। আজ রাতে এতিয়াৰ পৰা লৈকে 10 বজালৈকে আমি কান্ধি উই ব্রিং ইউ এ বিউটিফুল কালেকশ্যন অফ পুৰণি ফিল্ম গীত, সংস দেট কণ্টিনিউ টু লিভ ইন আৰ হাৰ্টছ একৰছ জেনেৰেশ্যনছ। চ' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, চিট বেক, ৰিলেক্স এণ্ড এনজয় দিছ টাইমলেছ মেলোডিজ। এতিয়া পহিলা গীত শুনি আব মথু মাথি ফিল্মৰা একটা ইউ ন চাৰ্ম অফ নেচাৰ আৰু জয় অফ ট্ৰাভেল লগা আমি কান এইটো গীতে শুনি আব। মুকেশ কোৱা গীত আৰু খৰচ, মিউজিক দিছ ইজ সলীল ছত্ৰী, লিৰিক্স শৈলেন্দ্ৰা। শুনি কিনা এনজয় কৰিবি মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ।